जनाब कहते हैं कि सुबह का टाइम जो होता है, सुबह का वक्त जो होता है, ये बड़ा एक अजीब किस्म का टाइम होता है। रात गुजर चुकी होती है मगर दिन अभी मुकम्मल तौर पर फैला नहीं होता। इंसान के पास एक पूरा दिन सामने होता है जैसे खाली सफ़ा, और ये हमारे इख्तियार में होता है कि इस सफ़े पर हम क्या लिखते हैं। कोई इस दिन को गुस्से में गुजार देता है, कोई शिकायतों में गुजार देता है, कोई दूसरों की बुराइयां तलाश करने में गुजार देता है, कोई फजूल मसरूफियात में, और कोई ऐसे में, या कोई ऐसा भी होता है जो सुबह के पहले लम्हे ही ये फैसला कर लेता है कि आज मैं कल से बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूंगा, आज की सुबह शायद जो है ना इसी फैसले के लिए बेहतरीन सुबह है। क्योंकि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें माजी में ले जाने के लिए मतलब जो है ना नहीं है, बल्कि हमारे आज को बेहतर बनाने के लिए भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें बताती है कि इंसान का असल हुसन उसके किरदार में है, इंसान की असल दौलत उसका एक अच्छा इखलाक है, उसकी असल इज्जत यह है कि दूसरे लोग उससे महफूज रहें, उसकी असल कामयाबी यह है कि उसकी वजह से किसी की ज़िंदगी आसान हो। और शायद जो है ना यही वो चीज़ है जो आजकल हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा जो है ना कम होती जा रही है जी। हम सब अपने लिए आसानी चाहते हैं मगर दूसरों के लिए आसानी बनने की कोशिश कम करते हैं जी। यहाँ ये बात मैं कहना चाहूँगा लिसनर्स के, ज़रा अपने घर से आगाज़ कीजिए। सुबह उठते ही हम किस से बात करते हैं? माँ ने अगर कोई बात कह दी तो हमारा जवाब कैसा होता है? वालिद ने अगर जो है ना वालिद ने किसी काम के लिए आवाज़ दी तो हम खुश दिली से जो है ना जाते हैं या झुंझला जाते हैं? बीवी ने किसी बात की तरफ जो है ना तवज्जो दिलाई तो हम उसे जो है ना बहस बना देते हैं या सुकून से सुनते हैं? बच्चे ने कोई सवाल पूछा तो हम उस वक्त जो है ना उसे क्या वक्त देते हैं, टाइम देते हैं? ये छोटे छोटे लम्हे हैं यकीनन कि जो है ना हमें मतलब ये ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है, लेकिन यही लम्हे हमारे किरदार की एक असल तस्वीर हैं और हमारे किरदार की जो है ना असल तस्वीर बनाते हैं। याद रखिएगा लिसनर्स के, हम सीरत तैयबा को बड़े बड़े वाक़यात में तलाश करते हैं मगर शायद जो है ना हमें इसे अपने रोज़मर्रा के मामूली लम्हों में तलाश करना चाहिए। जब कोई आपसे बदतमीज़ी करे और आप अपनी ज़बान रोक लें, जब कोई आपकी ग़लती बताए और आप ज़िद के बजाय जो है ना अपनी इसलाह कबूल करें, जब किसी कमज़ोर का हक जो है ना आपके हाथ में हो और आप उसे पूरा हक दें, पूरा कर दें, जब किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई शुरू हो और ये कि आप खामोश रहने या गुफ्तगू बदलने का फैसला कर दें, ये सब वो लम्हे हैं जहाँ सीरत हमें ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में जो है ना दाखिल होती है जी। और मेरे नौजवान दोस्तों, यहाँ ये बात भी मैं कहना चाहूँगा कि आज की सुबह ख़ास तौर पर आपसे ये बात ज़रूरी है कि आपके हाथ में मोबाइल है, आपके सामने पूरी दुनिया है, आपके पास इलम के बेशुमार जो है ना ज़राए हैं, लेकिन इस दुनिया में गुमराही के रास्ते भी बहुत से हैं, बहुत कहीं हैं, कहीं ज़्यादा आसान हो चुके हैं। आज की जवानी बहुत कीमती है, इसे सिर्फ स्क्रॉल करते हुए, दूसरों की ज़िंदगी देखते हुए, फजूल बहसों में जो है ना बेमकसद ताल्लुकात में या ऐसी चीज़ों में ज़ाया ना कीजिए जो आपके मुस्तकबिल से कुछ मतलब जो है ना आपको मतलब मुस्तकबिल में कुछ ना दें। अपनी जवानी को किसी मकसद के साथ जोड़िए, इलम सीखिए, हुनर सीखिए, अपने वालदैन के ख्वाब को समझने की कोशिश कीजिए, अपने जिस्म और जहन को मतलब जो है ना वसी रखिए, और ये ना कि अपने जिस्म और जहन का ख्याल रखिए, अपनी निगाह की हिफाजत कीजिए और अपने वक्त को कीमती समझिए। याद रखिएगा लिसनर्स के, यहाँ ये बात मैं कहना चाहूँगा कि नौजवानी जो होती है ये दोबारा नहीं आती, वक्त वापस नहीं आता, गुजर जाने वाली सुबह दोबारा इसी तारीख पर नहीं आती जी। और इसीलिए आज की सुबह आपसे कहती है कि आप अपने वक्त के मालिक बने, अपने मोबाइल के गुलाम ना बने। और एक और चीज़ जो आजकल हमारे माशरे को शदीद मतलब जो है ना मुतासिर कर रही है या मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है हमारे इस माशरे में, हया के हवाले से हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे कि हया सिर्फ लिबास का नाम नहीं है, हया ज़बान में भी है, निगाह में भी है, गुफ्तगू में भी है, मिजाज में भी है, सोशल मीडिया पर भी और तन्हाई में भी है। इंसान का असल किरदार उस वक्त सामने आता है जब उसे देखने वाला जो है ना कोई इंसान मौजूद ना हो।
जब मोबाइल की स्क्रीन पर कोई ऐसी चीज सामने आए जिसे देखने से दिल रोकना चाहिए, मगर जो है ना ख्वाहिश कहे कि देख लो, वहाँ आपका फैसला आपके किरदार की खबर देता है। जब किसी के बारे में जो है ना ऐसी बात मालूम हो जिसे फैलाने से आपको शोहरत मिल सकती हो मगर जो है ना किसी की इज्जत मुतासर हो सकती हो, वहाँ खामोश रहना आपकी शख्सियत का एक इम्तिहान है। लिसंस, आज हमें मालूमात से ज्यादा जमीर की तरबियत की भी जरूरत है। और फिर आती है सच्चाई। जी जनाब, सच्चाई वो खूबी है जिसके बगैर जो है ना माशरा अंदर से खोखला हो जाता है। आज हम झूठ को झूठ नहीं समझते, कहते हैं कि बस मिजाक था, बस बात बनाने के लिए कहा था, बस कारोबार चलाने के लिए, मतलब जाना कहा था कारोबार के लिए कहा था, कारोबार चलाने के लिए थोड़ा सा बढ़ाकर बता दिया था, बस किसी से बचने के लिए बहाना बना दिया था। मगर छोटे छोटे झूठ जब जिंदगी का मामूल बन जाएं तो इंसान खुद भी नहीं जान पाता कि उसकी असल शख्सियत कहाँ खत्म हुई है और बहानों की दुनिया कहाँ शुरू हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें सच्चाई का वो मयार दिखाती है जिसमें कौल और अमल के दरमियान फासला नहीं होता चाहिए। इसलिए आज अपने आप से एक छोटा सा वादा कीजिए, जो नहीं जानना, या मतलब जो है ना जो नहीं जानता उसे नहीं जानता कहूँगा, और जो नहीं कर सकता उसे या उसका मतलब जो है ना वादा नहीं कर सकता, मतलब जो है ना उसका वादा नहीं करूँगा, और जो वादा करूँगा उसे पूरा करने की एक पूरी कोशिश करूँगा। यही किरदार है जी। और ये कि और ज़रा अमानत को भी देखिए जी, अमानत सिर्फ जो है ना किसी के पैसों या किसी के सामान का नाम नहीं है, किसी का राज भी संभाल कर रखना ये भी एक अमानत है जी। किसी की इज्जत भी अमानत है, किसी ने आपसे दिल की बात की है तो वो भी जो है ना अमानत है, किसी ने आपको अपनी मुश्किल बताई है तो उसे दूसरों की महफिल में मौजू बना देना ये भी एक खयानत है जी। किसी ने आप पर एतमाद किया और आपने उस एतमाद को मतलब तोड़ दिया तो सिर्फ जो है ना एक ताल्लुक नहीं टूटा बल्कि इंसान के अंदर एतमाद की सलाहियत भी जख्मी हुई है जी। इससे इंसान के अंदर एतमाद करने की एक सलाहियत भी जख्मी होती है जी। और आज हम कितने लोगों के राज महफूज रखते हैं, कितने लोगों की कमजोरियां अपने पास रखते हैं, और कितने लोगों को मतलब जो है ना हम जलील और रसवा करते हैं। कितनी बातें हम सिर्फ जो है ना इसलिए दूसरों को नहीं बताते कि हमें मालूम है कि ये हमारी नहीं किसी और की जिंदगी है, या किसी और की जिंदगी की बातें हैं। ये भी सीरत का एक सबक है जी। मेरे सामीन, आज के प्रोग्राम में हम एक चीज को भी जो है ना याद करना चाहेंगे यहाँ पे कि जो शायद जो है ना हमारी जिंदगी से खामोश से कम होती जा रही है, रहम के मामले के हवाले से यहाँ बात करना चाहेंगे हम। हम दूसरों को जल्दी फैसला मतलब जो है ना बना देते हैं। कोई गरीब है तो कहते हैं कि उसने मेहनत नहीं की है, कोई नाकाम है तो कहते हैं कि इसमें काबिलियत नहीं है, कोई कर्ज में है तो कहते हैं कि इसने फजूल खर्ची की है, कोई जहनी दबाव में है तो कहते हैं हम मतलब जो है ना ये कमजोर है, कोई गलती कर बैठे तो कहते हैं कि इसे सबक सिखाओ। याद रखिएगा लिसनर्स के, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि शायद जो है ना हमें उसकी पूरी कहानी मालूम ही नहीं है। याद रखिएगा ये बात कि रहमत ये भी है कि फैसला करने से पहले इंसान की हालत समझने की कोशिश की जाए, किसी के जूते पहनकर उसके रास्ते पर चलने की कोशिश की जाए। शायद जो है ना वो शख्स आज खामोश है, वो अंदर से बहुत शोर में मुब्तिला है, ये मुब्तिला हो। शायद जो है ना जो शख्स गुस्से में है वो किसी तकलीफ से गुजर रहा हो, शायद जो शख्स जो है ना बार बार गलती कर रहा है उसे सजा से पहले जो है ना किसी रहनुमाई की जरूरत है। और यही वजह है कि आज हमें अपने माशरे में नरम दिल इंसानों की जरूरत है। सिर्फ बुलंद आवाजों या बुलंद आवाज इंसानों की जरूरत नहीं है, एक और बहुत अहम चीज है माफी के हवाले से। यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स के, हम में से कितने लोग जो है ना अपने दिल में पुरानी बातें उठाई फिरते हैं। 5 साल पहले जो है ना किसी ने कहा था कि 10 साल पहले किसी ने मतलब क्या किया था, ये बात मतलब जो है ना हमें याद रहती है। फलाने शादी में क्यों नहीं बुलाया, फलाने कारोबार में क्या किया, फलाने जो है ना एक मरतबा हमारी बेइज्जती की थी,
ہم ان واقعات کو یاد رکھتے ہیں اور ہر بار دل دوبارہ زخمی کر لیتے ہیں. کبھی کبھی انسان دوسروں کو یا دوسرے کو جو ہے نا سزا دینے کے لیے ناراضگی رکھتا ہے جی, اور مگر جو ہے نا حقیقت میں سزا خود کو دے رہا ہوتا ہے, حقیقت میں نا سزا خود کو دے رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ معاف کرنا ہمیشہ دوسرے کے لیے نہیں ہوتا, کبھی اپنے دل کو بھی آزاد کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہے تو حق کا قانونی یا اخلاقی مطالبہ اپنی جگہ موجود ہے, مگر جو ہے نا اپنے دل کو نفرت کی مستقل آگ میں جلانا یہ ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اصلاح کی کوشش کریں جی, اپنی جگہ اسے بتانے کی ایک مطلب جو ہے نا کوشش کریں کہ یہ بھائی آپ نے غلطی کی ہے, اسے آپ سدھارنے کی کوشش کریں, لیکن جو ہے نا محفل میں نہیں, کسی محفل میں نہیں. مگر ہر صبح اسی غصے کے ساتھ اٹھنا ضروری نہیں ہے کہ مطلب جو ہے نا آپ غصے کے ساتھ اٹھیں. زندگی بہت زیادہ مختصر ہے جی, اس سے پرانی ناراضگیوں کا قبرستان نہ بنائیے لسنز. اور میرے خوبصورت سامعین, آج 12 ربیع الاول کی اس خوبصورت محفل میں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ محبت صرف جذبات میں نہیں ہوتی, ذمہ داری میں بھی ہوتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, تو پھر جو ہے نا ہمیں اپنے پڑوسی کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہوگا, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا, اپنے والدین کے ساتھ نرمی اختیار کرنی ہوگی, اپنے بچوں کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا, اپنے بچوں کو عزت دینی ہوگی, اپنے کاروبار میں دیانت لانی ہوگی, اپنے ملازم کو انسان سمجھنا ہوگا, اپنے مخالف کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہوگا, اپنی زبان کو بھی دوسروں کی مطلب جو ہے نا اپنی زبان کو دوسروں کی عزت کے لیے محفوظ رکھنا ہوگا, اپنے اختیار کو ظلم کا ذریعہ نہیں بنانا ہوگا. اور یہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج کی صبح کا یہ پروگرام آپ کے لیے صرف جو ہے نا سننے کا پروگرام نہیں ہے, صرف سننے کا پروگرام نہ بنے, اسے ایک ذاتی محاسبے میں تبدیل کیجیے جی. اپنے دل سے پوچھئے کہ میں کس چیز میں کمزور ہوں, اپنی زبان میں, اپنے غصے میں, اپنی نگاہ میں, اپنے وقت میں, اپنے والدین کے ساتھ رویے میں, اپنے کاروبار میں, اپنے رشتوں میں, اپنی نماز میں, یا پھر جو ہے نا اس بات میں کہ میں دوسروں کو تو نصیحت بہت زیادہ کرتا ہوں مگر جو ہے نا خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور پھر جو ہے نا ایک چیز منتخب کیجئے, صرف ایک, اور آج سے اس پر کام کرنا شروع کر دیجئے, کیونکہ انقلاب ہمیشہ جو ہے نا ہزار فیصلوں سے نہیں آتا, کبھی جو ہے نا ایک سچا فیصلہ پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے جی. اور میں یہاں لسنرز یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ صبح بھی گزر جائے گی, پروگرام بھی ختم ہو جائے گا, نعت کی آواز بھی خاموش ہو جائے گی, آپ اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے, لیکن اگر آپ مطلب یہ کہ اگر آج کی صبح آپ نے اپنے اندر ایک سوال جگا لیا, اگر آپ نے اپنی کسی ایک عادت کو پہچان لیا, اگر آج آپ نے کسی ایک رشتے کو بچانے کا فیصلہ کر لیا, اگر آج آپ نے کسی ایک انسان کو معاف کرنا مطلب جو ہے نا سیکھ لیا یا معاف کر دیا, اگر آج آپ نے کسی ایک غلطی سے توبہ کر لی, اگر آج آپ نے اپنے موبائل کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا, اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا, تو یقین کیجئے کہ یہ اگر آج آپ نے کسی ایک رشتے کو بچانے کا فیصلہ کر لیا, اگر آج آپ نے کسی ایک انسان کو معاف کرنا مطلب جو ہے نا سیکھ لیا یا معاف کر دیا, اگر آج آپ نے کسی ایک غلطی سے توبہ کر لی, اگر آج آپ نے اپنے موبائل کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا, اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا.

ट्रांसमिशन का सवाल आप लोगों के सामने रखता हूँ जी। अगर आपको 12 रबीउल अव्वल के दिन अपनी जिंदगी में सिर्फ जाना एक चीज बदलने का मौका दिया जाए जो आपको सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लेके जाए, तो आप सबसे पहले जो है ना क्या बदलेंगे? अपनी जबान, गुस्सा, मोबाइल के इस्तेमाल, वालदेन के साथ रवैया, झूठ, गीबत, वक्त का ज़िया या कोई और चीज़ जी, या कोई और

ऑलराइट जनाब, एक मरतबा फिर मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ जी। और कुछ थोड़ी सी यहाँ पे हम बात करते हैं जी। मेरे नहायत मोहतरम मुअज्जिज और बहुत ज्यादा दिलों में बसने वाले सामेईन, मेरे नहायत मोहतरम सामेईन, आज आइए अपनी गुफ्तगू को सिर्फ जाना एक वाकये या एक पहलू तक महदूद ना रखें, बल्कि सीरत तैयबा के उस वसी आसमान के नीचे जो है ना चंद लम्हे गुजारें, जहाँ हमें जिंदगी के तकरीबन हर सवाल का जवाब मिलता है। याद रखिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका सिर्फ जाना एक तारीख का बाद नहीं है, ये एक मुकम्मल अमली नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमी देखी तो सब्र का रास्ता दिखाया, गुर्बत देखी तो वकार के साथ जीना सिखाया, तजारत की तो दयानत का मयार कायम किया, घर बसाया तो हुस्न माशरत का नमूना पेश किया, औलाद से ताल्लुक रखा तो शफकत का एक दर्स दिया, दोस्तों के साथ रहे तो वफादारी सिखाई, मुखालफीन का सामना किया तो अदल और हिकमत को हाथ से ना जाने दिया, इख्तियार मिला तो तकबर ना किया, मुश्किलें आई तो असूल नहीं छोड़े। यही सीरत तैयबा का हुसन है कि जिंदगी के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि जो है ना इंसान के पूरे वजूद के लिए रहनुमाई मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की जिंदगी हमें जो है ना ये एक सबक देती है, लिसनर्स, हमें ये सबक देती है कि अजमत का आगाज मनसब मिलने के बाद नहीं होता, बल्कि किरदार मनसब से पहले जो है ना बनता है। मगर जो है ना एक बात याद रखिएगा कि मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल सादिक और अल अमीन से मतलब जानते थे। ये इस बात की गवाही थी कि नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानत लोगों के दिलों में जगह बना चुकी थी। आज हम अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, नौजवानों को बड़ा ओहदा चाहिए, अच्छी मुलाजमत चाहिए, कारोबार चाहिए, दौलत हासिल करते करते मतलब जो है ना हम थक जाते हैं, हम दौलत जो है ना मतलब हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमें इनके अंदर सच्चाई और अमानत भी पैदा करनी होगी जी। और ये कि क्योंकि एक ऐसा इंसान जो बहुत कुछ जो है ना हासिल कर ले मगर जो है ना किरदार खो दे, हकीकत में बहुत कुछ हासिल करके भी जो है ना बहुत कुछ खो देता है। याद रखिएगा लिसनर्स के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें सच बोलने की एक तालीम देती है जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें सच बोलने की ऐसी तालीम देती है जिसकी आज हमारे माशरे को शदीद जरूरत है। आज झूठ को हमने बहुत नाम दे दिए हैं, बहुत ज्यादा आम कर दिया है। कभी इसे मसलत मतलब जाना कहते हैं, कभी मजाक कहते हैं, कभी कारोबारी तरीका कहते हैं, कभी मजबूरी कहते हैं, कभी झूठ, ख्वाह जो है ना झूठा हो या बड़ा हो, इंसान के अंदर देखें झूठ अगर जो है ना छोटा हो, बिल्कुल छोटा हो, झूठ झूठ ही होता है जी, झूठ झूठ ही होता है, इंसान के अंदर का एतमाद कमजोर करता है जी। अगर दुकानदार सच बोले, खरीदार दयानत करे, मुलाजम अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, अफसर इख्तियार को मतलब जो है ना अमानत समझे, तालिबे इल्म इम्तिहान में नकल से बचे।

0: वेल स्वीट लिसनर्स, एक बार तो फिर मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ जी मेरे मोहतरम सामीन रेडियो दिलबर एफएम 94.4 भी। और आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ जो शायद है ना मामूल की रेडियो गुफ्तगू से ज़रा मुख्तलिफ है। हमारे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स भी होते हैं, हल्की फुल्की मौसीकी भी हम आप लोगों के लिए बजाते रहते हैं, हंसी मजाक भी होता है, लिसनर्स के साथ गपशप भी होती है, कभी मोहब्बत की बात भी होती है, कभी जिंदगी के रंगों की बात भी होती है, कभी दुख बांटे जाते हैं, कभी मुस्कुराहटें तकसीम की जाती हैं। और यकीन कीजिए कि इन प्रोग्रामों का मकसद भी सिर्फ वक्त गुजारना नहीं होता, रेडियो का असल हुसन यही है कि आवाज़ तफरी के साथ साथ कभी किसी के दिल को सहारा भी दे दे, कभी किसी को सोचने पर मजबूर भी कर दे, कभी किसी को अपनी जिंदगी का कोई भूला हुआ पहलू भी याद दिला दे। लेकिन आज की ये सुबह कुछ मुख्तलिफ है क्योंकि आज हमारी गुफ्तगू किसी आम मौजू पर नहीं है, आज हम उस हजीम हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं जिनकी जिंदगी इंसानियत के लिए एक मुकम्मल रहनुमाई है। और शायद जो है ना इसीलिए आज मैं अपने सामीन से एक बहुत सादा मगर जो है ना बहुत गहरा सवाल पूछना चाहूँगा, क्या हम सिर्फ जो है ना जबान के मुसलमान रह गए हैं? क्या हम सिर्फ जो है ना जबान के जो है ना मुसलमान रह गए हैं? ये सवाल किसी दूसरे के लिए नहीं है, सबसे पहले मेरे अपने लिए है और फिर जो है ना आप लोगों के लिए। हम जबान से कहते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हम दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद भेजते हैं, नात सुनते हैं, 12 रबीउल अव्वल आता है तो महफिलें सजाते हैं, सीरत का जिक्र करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन जब ये महफिल ख़त्म होती है तो क्या होता है? जब ये महफिल ख़त्म होती है, जब नात की आवाज़ बंद हो जाती है, जब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन के सामने अकेले रह जाते हैं, जब कारोबार का मामला आता है, जब गुस्सा आता है, जब किसी से इख्तलाफ होता है, जब किसी कमज़ोर पर इख्तियार मिलता है, जब किसी या जब कोई हमारी मर्जी के खिलाफ जहाँ बात करता है, तब क्या हमारी ज़िंदगी में भी उस मोहब्बत का कोई असर बाकी रहता है या नहीं? ये सवाल बहुत सख्त है मगर जो है ना शायद आज हमें सख्त सवाल ही पूछने की जरूरत है। लिसनर्स, यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा क्योंकि मोहब्बत सिर्फ जो है ना जबान से कह देने का नाम नहीं है, मोहब्बत इंसान के रवैये में भी दिखाई देती है जी। अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी शख्स से बहुत मोहब्बत है लेकिन मैं उसकी बात को अहमियत ना दूं, उसकी बात को ना समझूं, उसकी बात को इम्पोर्टेंस ना दूं, अहमियत ना दूं, उसके रास्ते को ना अपनाऊं, उसकी पसंद को जो है ना नापसंद मतलब उसकी पसंद और नापसंद को जो है ना इग्नोर कर दूं, परवाह ना करूं, उसके बताए हुए असूलों को अपनी ज़िंदगी में जगह ना दूँ, तो फिर मेरी मोहब्बत सिर्फ जो है ना एक दावा रह जाएगी। इसी तरह मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है ना अल्फाज नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा ताल्लुक है, एक ताल्लुक है, एक अहद है, एक वादा है, एक वादा है कि मैं अपनी इस्तेहात के मुताबिक अपनी जिंदगी को उन तालीमात के करीब लेकर जाऊंगा या लेकर जाने की कोशिश करूंगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई हैं। मेरे सामीन, आज हम जिस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में कुरान मजीद ने फरमाया है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं और अहले ईमान को भी दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया गया है। ये मकाम किसी आम इंसान का मकाम नहीं है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुरान कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का पैगाम किसी एक खानदान, एक शहर या एक नस्ल तक महदूद नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। और जरा सोचिए लिसंस कि अल्लाह ताला की तरफ से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो मकाम कुरान में बयान हुआ वो हमारे लिए मोहब्बत का कितना अजीम पैगाम है। قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے. اور قرآن نے ایمان کے تقاضوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کو مرکزی مقام دیا ہے. یہ صرف تاریخی عظمت نہیں ہے, یہ ہمارے ایمان کے لیے ایک زندہ تعلق ہے. اس لیے آج کی اس محفل میں جب ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو یہ صرف ایک نام نہیں ہوتا, یہ ہمارے ایمان کی یاد دہانی ہوتی ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا اسودہ موجود ہے جس میں زندگی کے ہر میدان کے لیے رہنمائی ہے. جناب یہاں یہ بات میں کرنا چاہوں گا, طاہر زمان یہاں یہ بات کرنا چاہے گا, جناب یہاں ایک خوبصورت حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تعلق قرآن نے بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے. سورہ العمران میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ آیت شاید جو ہے نا آج کے موضوع کا سب سے خوبصورت جواب ہے. جی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے, قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی محبت کی ایک علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہے. ایک اپنے آپ سے سوال پوچھئے. جی میں نوجوانوں سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا, سوال کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جمعے کے دن, چلیں جمعہ تو بہت دور کی بات ہے, کیا آیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم فرض نماز تو ادا کر دیتے ہیں لیکن سنت کبھی ہم نے جو ہے نا دل سے مطلب ایک محبت سے, چاہت سے, عشق سے ادا کی ہیں؟ یہ ہر ایک اس مسلمان کے لیے سوال ہے, کوشچن ہے, جو کہ کلمہ گو ہے, جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
1: نور ہدایت طائف میں گئے لے کے اپنے جینے کی دعوت امت قدر.
0: ہم کہتے ہیں کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
1: میری امت
0: محبت ہے, تو پھر ہماری زندگی میں ان کی سنت, ان کے اخلاق, ان کی سچائی, ان کی رحمت, ان کی امانت, ان کا صبر, ان کا عدل کہاں ہے, کدھر ہے؟ یہی آج کی اس محفل کا سوال ہے. جی اصل سوال ہے, اس سوال کے حوالے سے ضرور آئیے گا, اس سوال کو جو ہے نا سالو کیجیے گا. کالر چیک کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے. 0938-280-495. السلام علیکم جی. اچھا جی کالز آپ لوگوں کی آ رہی ہیں, اگر کوئی بھی شامل ہونا چاہتا ہے 0938-280-495 اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ شامل ہو سکتے ہیں.

निकले। तो एकनाथ शरीफ आप लोगों के लिए मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूँ जी। मदीने का सफर है और बहुत ही खूबसूरत नाथ शरीफ है। आई होप के आप महसूस होंगे, आपको अच्छा लगेगा। जई कीमत मेरे साथ साथ रहेगा और सुनते रहेगा FM 94 रेडियो दिलबर सोहाबी और FM 94 से अपने मेजबान ताहिर को।

0: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
1: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
0: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर एफएम 94 स्वाबी।

आप सुन रहे हैं दिलबर FM सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर FM 94 सवाबी। दिलबर FM 94।

0: तीसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालू के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पे खबर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगलार शमा
1: ओहो पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
2: नुदा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स फोन 0938273265
3: कामयाबी की नई मंजिल की तरफ पहला कदम उठाएं। कायद आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में FSC फर्स्ट ईयर में दाखिले और रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में अभी दाखिला हासिल करें। जदीद क्लासरूम्स, तजुर्बाकार असातिज़ा, बेहतरीन तालीमी माहौल और शानदार नतीजे के साथ हम आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरअज़म हैं। हमारे कैंपसेस मौजूद हैं शमसी रोड मर्दान, बागे इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, हकीमाबाद नौशहरा, सवाबी, जैदा और मैनी चौक कोठा। आज ही अपने करीबी कैंपस का विजिट करें और दाखिला यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और दाखिले के लिए हेड ऑफिस के नंबर 0938-28-0103 पर राबता करें। कायदे आज़म ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जहां तालीम बनती है कामयाबी की जमानत।
4: वेलकम टू FM 94, ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी, फ्रॉम 5 AM टू 1 AM।

0: माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह डेर जबरदस्त जी और डेर जबरदस्त कारी हाफिज तवाब रहमान सब सेट मुतबा सेट तक लड़ बुची आओ आखिर देनो कारी मुतबा सेब तिलावत होगी जी उमा सरा टाइम हम कम देनो सिर्फ लस मिनटान पा दीजिए और दी के बीच कम देना दो अबम कहो और आखिर किच कम देनो यो दो दो लफ्जों किच कम देना तासना लेकिन तासरात बम आलू जी कारी मुतबा साहब जी मोहम्मद मुतबा साहब
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 031 93 94 94